प्रश्न का तुला पड़े जायते असे सुखा तुम सुखा चढ़े प्रश्न का तुला।

0: सी है, जो आपका स्केल है, वो स्केल आप गाएंगे तो गाना अच्छी होती है।
1: अच्छा, अभी जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स है,
0: अच्छा,
1: जिनको गाना सीखना है, मगर हम हमारे पास टीचर नहीं है, हम टीचर के पास जा नहीं सकते किसी किसी वजह से, तो हम हमारी स्केल कैसे ढूंढे?
0: स्केल ढूंढे कैसे? आपको थोड़ा पेटी लेना पड़ेगा, पेटी है जो भी छोटा केसियो, लेके आपका गला को देखना पड़ेगा, ये जो रीड रहता है रीड को टच करके आप देख सकते हैं, ये सीधर से मुझे बरोबर लग रहा है क्या, नीचे गाओगी तो एकदम मोटा लगेगी।
1: आप गा के बता सकती है?
0: हाँ बता सकती हूँ।
1: हाँ, बताइए।
0: जैसे मैं एक भजन गा रही हूँ।
1: और वो स्केल कौन सा है?
0: मेरा स्केल अभी चालू है, जी चालू है, जी स्केल में जी चालू है। जैसे भजन गा रही हूँ तुलसीदास जी के राग भैरवी में, राम राम।

0: ये जो स्केल में गाई,
1: ये अभी जी स्केल था, ये अगर दूसरे स्केल में गाए,
0: मैं बाई चांस मेरा जी स्केल पे, मैं ऊपर स्केल में गाऊंगी, सी के डी में गाऊंगी,
1: तो वो कैसा होगा?
0: तो वो कैसा होगा, तो वो हाई पिच में जाएगा, वो गला सुनाई ठीक से सुनाई नहीं देगा।
1: एग्जांपल दीजिए।
0: वो कर्कश होगा।
1: वो एग्जांपल बताइए।
0: तो अब स्केल चेंज करके बताते हूँ आपको। तो इसमें कहा गला को भी तकलीफ होगी, गला को भी तकलीफ हो, और जो सिंगर है उसको भी अच्छी नहीं लगेगी, सुनने वाले को भी अच्छी नहीं लगेगी। जी अरे वो तो आवाज ऊपर बहुत कर्कश लग रही है, वो अच्छी नहीं लग रही, आवाज अच्छी नहीं लग रही, सुनने में अच्छी नहीं लग, शब्द भी ठीक से नहीं होगी। जिसे अपना जो रेंज है, जो पीच है, उसमें गाना चाहिए।
1: अभी अभी कौन सा स्केल पे गा रही है आप?
0: वो व्हाइट सेवन में मैं गा रही हूँ। हाँ।

0: जिसे मैं एक टीचर हूँ तो हिसाब से जो भी स्केल दे सकते मैं वो स्केल पे, ऐसे रिया साधना है तो हर स्केल पे मैं गा के कर सकती हूँ, पर स्टूडेंट के लिए वो तकलीफ कारक हो जाएगी।
1: मतलब ऐसा है कि जिस आवाज में आप कंफर्टेबल है वो स्केल आपका,
0: इसमें
1: बे मतलब बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं, नीचे जाने की जरूरत
0: नहीं, भाव दो उसमें, स्केल पे भाव दो, उसमें रस लाओ, संगीत में ऐसे गाओ जे सबको अच्छा लगे, सुनने वालों को भी आंख में आंसू आ जाए, वही जरूरी है। हाई पिच जरूर नहीं है, पर मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ, एक साधक, बहुत दिन साधना किया, इसलिए कोई भी पिच में मैं गा से कर सकती हूँ।
1: अच्छा, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस आवाज में हम अच्छे से कंफर्टेबली गा सकती है, वो स्केल पे गाना है।
0: हाँ, बरबर।
1: उसके बाद का रियाज कैसे शुरू करें फिर?
0: उसके बाद
1: हम गा लेते हैं बाथरूम में, गा लेते हैं पांच छह दोस्तों के साथ गा लेते हैं, मगर अभी हमें सीरियस गाना गाना है तो क्या करें?
0: तो पहले जो बेसिक रहता है अपना, सारेगामा जे अलंकार है, पलटा है,
1: वो सब सारेगामा कैसे करना है?
0: सारेगामा एक स्केल पकड़े तो उसमें सा रे, शुद्ध

0: मतलब ऊपर का सा भी कंफर्टेबली लगना चाहिए, नीचे का सा भी कंफर्टेबली लगना चाहिए,
1: सब सुर क्लियर एकदम कंफर्टेबल लगना चाहिए, तो वो सुनने वाले को अच्छी नहीं लगेगी। और इसमें जो नोट्स है, तीव्रमा है, कोमल गा, कोमल धा, कोमनी, ये जो 12 सुर है वो भी अच्छे से लगना चाहिए वो हिसाब से। और जो अपना बंदिश वगैरह शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, वो बंदिश भी क्लियर आना चाहिए। वो सब गुरु के ज्ञान लेके करना पड़ता है, संगीत ऐसा नहीं होता है।
0: मगर हम ये, हम गुरु के पास नहीं जा सकते, इसलिए हमने गुरु का अपने पास बुला लिया है, संगीता गुरु संगीत की गुरु हमारी संगीता गुरु है। अच्छा, तो सारे गामा कितने देर करना चाहिए डेली?
1: डेली मेरे हिसाब से डेली सुबह का टाइम

0: मेरी आज के लिए बहुत अच्छा रहती है। कम से कम बिगनर के लिए कम से कम आधा घंटा बैठो रोज, पर जो लोग
1: तो शुरुआत ओमकार से करें,
0: ओमकार करें, सिर्फ सा लगाए,
1: सिर्फ सा लगा के बताइए
0: ऐसा सा।

0: इससे जो भी अपना गाय की जो थोड़ा विशारद कर लिए तो गाय की से आगे तो उनके लिए सुर साधना रही थी। सुर साधना जो गुरु के माध्यम से सुर साधना करे, जो सब नोट्स लगाए, बोलते मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तारा सप्तक, तीनों सप्तक में साधना करो, पर बिगनर कर लिख के लिए सिर्फ सारेगामा करो, अलंकार करो, कम से कम आधा घंटा करो, इतना तो करो।
1: मतलब पहले ओमकार करना है,
0: हाँ,
1: फिर सिर्फ सा करना है,
0: सिर्फ सा, बिगनर करे तो सिर्फ सा,
1: मतलब ये 10 मिनट ओमकार, 10 मिनट सिर्फ सा,
0: 10-15 मिनट सिर्फ सा ही कीजिए, सा ही, सा क्लियर हो जाए तो बहुत कुछ क्लियर हो जाती है।
1: ऐसा क्या है सा में?
0: सा में तो ब्रह्म है,
1: जैसे
0: ब्रह्म बोलते सा करो, अपने कुंडलनी जागृत होते है, ओमकार करो, ओमकार ही सा होती है।
1: अच्छा,
0: हाँ, सा जो होती है ओमकार, ओ जो होती है वो सा पे कुंडलनी जागृत होते उधर तक जाता है बोलते है ना, तो उसमें से सा ही मैंने, सा क्लियर हो जाए ना तो धीरे धीरे पीछे पीछे जो अपने सुर माला है वो आ जाती है।
1: और ये जो कहते हैं कि नाभि से गाना चाहिए, मतलब
0: नाभि से बोलते, पेट से गाना चाहिए, वो जो आकर बोलते, आकर बोल लो, मुंह खोल के गाओ, गुरु बोलते पेट से गाओ, मुंह गला को बंद करके मत गाओ, तो मुंह खोल के गाओ।
1: में फर्क बताइए,
0: जिसे मुंह करके
1: नाभि से गा के बताइए,
0: सा पेट से आ रहे, सा और मुंह बंद करके पेट से,
1: मतलब वो सॉफ्टनेस आएगा,
0: सॉफ्टनेस, और सा वो गले से आ रही है, जो क्लियरिटी नहीं आएगा सुर में। पेट से गा तो क्या, पेट और हार्ट लेके जो गाना आता है, जो सुर आते है वो क्लियरिटी लाता है, सुर को क्लियरिटी लाता है, इसलिए बोलते गुरु लोग जे पेट से गाओ, मुंह खोल के गाओ, आ करके गाओ, आ कर में बोलो,
1: मतलब मुंह खुला करके,
0: खुला करके बोलो, सा, सा।
1: अच्छा और चिल्ला के भी नहीं, मुंह खुला करके, मतलब चिल्लाने की नहीं,
0: तो गला खराब हो जाएगी, सुर में कर्कट पन आ जाएगा, कर्कश जो बोलते, चिल्ला के गाना गाने जाए, पूरा जो भी करो सॉफ्ट पन में करो।
1: अच्छा, सबसे मेन सॉफ्टली करना है।
0: हाँ, सॉफ्टली करो,
1: 10 मिनट ओमकार, 10 मिनट सा, हाँ, और उसके बाद सॉफ्टली सारेगामा पा भी सॉफ्ट,
0: हाँ, अलंकार करो, पलटा करो, उसे करो, फिर बाद में राग सीखे होंगे तो राग,
1: पलटा मतलब क्या,
0: पलटा बोलते जिसे सारेगामा गामा पा वो अलंकार बोलते, पर पलटा क्या सर, सुर जो उल्टा पालट की होती है उसका पलटा बोलते,
1: जैसे
0: सागा गारे सारे नी सारे मामा गारे गा सारे गा पा पा, हाँ नहीं एक ही बात नहीं है, सागा रेगा सारे नी सारे मा गामा रेगा सारे सारेगा,
1: इससे क्या होता है,
0: पलटा होते जो आप संगीत में एक तान के एक पार्ट है, तान है, सरगम है, वो क्लियरिटी आता है, सारे रे सागा गा रेगा सारे सारे

0: वाह, अच्छा ये पलटा है,
1: पलटा है, पलटा मदद करते है ताना करने के लिए। अच्छा। जो पलटा है सरगम करने के लिए, मागा रे सा नी सा गा मा पा, मागा मागा रे सा
0: क्या बात।
1: ये जो चीज है वो जो सरगम पार्ट है, मंत्र को आया ऊपर गया, हाई नोट्स गया, ये आया, उसी हिसाब से वो बोलते जे पलटा करो, उसमें सरगम पार्ट अच्छी होती है। आकर तो आकर में आकर तान में होती, ये तान पट के लिए भी वो आकर में करना पड़ता
0: है। ये सब आप गा रही है, ये सब पेट से,
1: पेट से करना पड़ता है, हार्ट और पेट। संगीत तो हार्ट, हार्ट की चीज होती है। हाँ। और साधना नाभि से होती,
0: मतलब ब्रीदिंग पेट से, सांस पेट से लेना, पेट भर के,
1: पेट भर के बोलते होता है ना, सा नहीं होती है, सा सा ओ, तो पेट से ही होती है सब काम।
0: और ये जो लोग फिर आप बोल रही सॉफ्ट से गाना, अभी मोहम्मद रफी हाँ? उनके जैसा ऊपर आवाज पिक्चर में को तो शायद ही किसी का हो,
1: नहीं होगा। हाँ, हाँ? बर, बर, बर,
0: तो फिर वो इतना ऊपर गाते हैं, मतलब वो एक तरह का चिल्लाना ही है।
1: नहीं नहीं नहीं
0: नहीं, मेरी बात सुनिए, हम देखिए हमको संगीत का ज्ञान नहीं, इसलिए हमारे प्रश्न है ऐसे, हमारे हिसाब से वो चिल्ला के गाते क्योंकि, मगर वो इतना उनका चिल्लाना इतना सॉफ्टली होता है, लेकिन
1: हाँ।
0: हमारा हम जब उनका गाना गाने लगते तो चिल्लाना लगता है, ऐसा क्या फर्क है उसमें?
1: फर्क है कि उन्होंने संगीत को कैप्चर कर किया हुआ है, संगीत साधना की है, जो उनका स्केल भी हाई पिच में है, मन गॉड गिफ्टेड है, और उनके जो गाना है वो संगीत साधना करने बाद वो पता चल जाता है, जे हाई नोट्स में लगाते टाइम जे कैसे गाए वो नहीं लगेगा जे वो नाक से गा रहे हैं कि चिल्ला के गा रहे हैं, वो कैप्चर आ जाता है वो चीज जो बोलते हैं, तो वो चिल्लाने नहीं होती है,
0: तो उनका वो गॉड गिफ्टेड है,
1: गॉड गिफ्टेड हाई पिच में उनका गला है, तो अच्छा। वो नहीं होता जे जे वो उनका रेंज नीचे है वो हाई पे नहीं, उनके गॉड गिफ्टेड है, तो वो हाई रेंज में है।
0: मुझे मोहम्मद रफी का कोई ऐसा गाना गाना है तो मैंने क्या करना चाहिए, जब मेरी उनकी लेवल नहीं है, हाई स्केल नहीं है, मगर इच्छा है, तो उसके लिए क्या पड़ेगा?
1: आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं है,
0: नहीं, नहीं,
1: थोड़ा साधना, सुर साधना नहीं, करेंगे
0: नहीं,
1: करेंगे
0: नहीं, आप समझ नहीं है, मुझे वो लेवल पे मैं कोशिश करके भी नहीं जा सकता हूँ।
1: अच्छा, हाँ।
0: तो फिर उस टाइप में गाने के लिए मेरे हिसाब से हाई स्केल पे जाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए?
1: हाई स्केल पे जाने के लिए कम से कम मुझे लग रहा है भले ही कराओके है तो कुछ एक गुरु के पास थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट लोग को आप कराओके गा रहे, पर ई टाइप के करो, थोड़ा सा अलंकार साधना करो, थोड़ा सा आइडिया लो, तो हाई पिच में कैसे कर सको कि वो चिल्लाने नहीं लगेगी और सॉफ्टली गा सकते हो, इसलिए आइडिया लेना पड़ेगा किससे,
0: क्योंकि मोहम्मद रफी जिस आसानी से ऊपर चले जाते हैं, बाकी कोई गाए तो वो चिल्लाना ही लगेगा,
1: चिल्लाना ही लगेगा, तो इसलिए वो आइडिया लेना पड़ेगा उनको, तो बोलती हूँ कोई आते जी को राव के जो गाते हैं थोड़ा आइडिया लेने के लिए जी, ये नोट्स डा डा डा, ये जो नोट्स वो लगाना चाहिए ना, तो इसलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा कोई गुरु से जो शास्त्रीय संगीत गुरु है उनसे आइडिया लीजिए, क्योंकि मोहम्मद रफी जी पूरा संगीत साधक है, मतलब वो उन्होंने संगीत को सीखे हुए हैं, जो भी लता जी है जो है जो आजकल भी श्रेया घोषाल जो भी है, तो वो सीखे हुए सब गुरु के, गुरु को पकड़ के सीखे है वो लोग।
0: मंडळी आपल्या बरोबर आहेत संगीता जींचे शिष्य संजय ढेरे, त्यांचा आवाज मी जेव्हा ऐकतो ना माझ्या अंगावर रोमांचच येतात, त्यांचं तोंड एवढंसं उघडतं, चेहऱ्यावर काही स्ट्रेस नसतं, आणि ते मोहम्मद रफीचे इतके टॉपचे वर्चस्व याचे गाणे कसे काय गाऊ शकतात? संजयजी राम राम, सगळ्यात पहिले मोहम्मद रफीचं तुम्ही ते वर्चस्वरातलं जे गाणं म्हणता आता त्याची झलक दाखवा बरं।
2: सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सबके स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी।
0: संजय जी आता मला तुम्ही ऐकताय आमचं बोलणं, माझा तोच प्रश्न आहे, आता तुम्ही मोहम्मद रफीचे गाणे इतके हाय पिचेस, इतके तुमच्या चेहऱ्यावर काही ना स्ट्रेस नसतो, काही नसतं, तुम्ही तुमचं तोंड पण एवढं सुघडतं, तरी एवढा पॉवर कस काय येतं? तुमची गाण्याची सुरुवात कशी आहे?
2: माझी सुरुवात तशी, माझी खूप लहानपणी सुरुवात झालेली आहे माझी. तिसऱ्या वर्षी मी डॉक्टरकडे ऍडमिट असताना, डॉक्टर नाईक अशोक स्तंभावरचे, माझी आई त्यांना सांगायची माझा संजू खूप छान गातो. त्यावेळेस ते गाणं मला त्यांनी विचारलं कुठलं गाणं गातो. त्यावेळेस मी त्यांना 3 वर्षाचा असताना दम मारो दम मिटे जाय गम हे गाणं, तेव्हापासून मला गाण्याची आवड आहे.
0: मग तुम्ही आता हे जे पॉवर लावता, हे वरचं सूर म्हणतात, त्यावेळेस तुम्ही नेमकं काय करतात?
2: पॉवर लावतो म्हणजे मी
0: का तुम्ही पॉवरच लावत
2: नाही? पॉवर लावतो पण ते माझे जे गुरु आहेत मोहम्मद रफी साहेब, खरोखर त्यांचा मला आशीर्वाद आहे. आणि मी घरी रोज सलग 3 तास ते 6 तास मी रियाज करत असतो. कराओके जरी गातो तरी जे गाणं येईल मी ते गातो, त्यामुळे मी स्वतःला तयार करत आहे.
0: तुम्ही रियाज करता म्हणजे नेमकं काय करता रोज?
2: सर मी आता थोडासा क्लासिकल बेसचाही अभ्यास केलाय, 6 लावतो, सारेगम करतो.
0: नाही थोडस डिटेल मध्ये सांगता तुमचा रियाज दिवसाचा कसा असतो?
2: सुरुवातीला मी सारेगम घेतो 10 मिनिट, त्यानंतर माझं कराओके चालू करतो.
0: तुमचं सारेगम आमच्या स्केलवर म्हणून दाखवा.

0: क्या बात है, आपका गाना सुनने के बाद दो इच्छा हो रही है कि हमने गाना गाना नहीं चाहिए, और गाना गाना है तो सीख के अच्छे से आपके जैसा गाना गाना चाहिए।
1: मैं सीखी है, संगीत तो सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है।
0: मंडळी पुढच्या रविवारी आपण गाणं म्हणायचं कसं याच्यावर डिटेल संगीताजींबरोबर गप्पा करणार आहोत, बरोबर संजयजी, अर्जुनजी आणि स्मिता पण असणार आहे। मंडळी काही गरज वाटली तर फोन करा 83 816 512 वर। राम राम मंडळी, भेटूया
2: कार्यक्रमात। आता ऐकूया जवानी जिंदाबाद या चित्रपटामधलं उदित नारायण यांनी गायलेलं गीत। समीर यांच्या या गीताला संगीत आहे आनंद मिलिंद यांचं।

0: दिखता क्या बाप, पर्दे पे तो बहुत हिलाते, आप थोड़ा हिला।
1: हाँ चाहिए ना।
0: अरे नहीं मत बोल, अपन की इज्जत का सवाल है, उठ जा उठ जा। नहीं किया ना ये सारे जाने नहीं देंगे।
1: अरे सुनिए,
0: क्या

0: किसी के क्या तोड़ेंगे फूल हमने तोड़ा।
1: अरे पाया जिसे दिलों का दुश्मन उसे कभी

0: इंजिनिअरिंग आणि मेडिकलच्या कठीण प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी आता जोशी इंजिनिअरिंग क्लासेसच्या माध्यमातून पेस सारख्या टॉप संस्थेचं मार्गदर्शन थेट शहरात उपलब्ध झाले. हे नवीन केंद्र विद्यार्थ्यांसाठी जेईई, नीट, सीईटी आणि शालेय स्तरावरील फाउंडेशन अशा अत्यंत महत्वाच्या परीक्षांची उत्तम तयारी करून देणार आहे. 9146773425 या नंबरवर नक्की संपर्क साधू शकता.
1: सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खुला देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं. आंखों से मानूस थे सारे चेहरे सारे सुने सुनाए पांव धोए हाथ धुलाए आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए. पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे. आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था. हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था. ख्वाब था शायद ख्वाब ही होगा. सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली. सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ.

0: दातांच्या आरोग्यासाठी विश्वासाचं नाव म्हणजेच डॉक्टर भूषण सुभाष सोनवणे डेंटल सर्जन यांचे माऊली डेंटल क्लिनिक. येथे डेंटल इम्प्लांट, रूट कॅनल, दातांची सफाई, एक्सरे आणि इतर कृत्रिम दातांची सुविधा उपलब्ध. पत्ता: ग्राउंड फ्लोर गॅलेक्सी प्राइड जेल रोड वॉटर टँक जवळ इंगळे नगर नाशिक. वेळ: सकाळी 10 ते 2 आणि संध्याकाळी 4 ते रात्री 9. अहो मग वाट कसली पाहताय, आत्ताच संपर्क करा 9420457020 या नंबरवर.
1: की आहट और न जाने की टोह मिलती है,
2: कब आते हो कब जाते हो. इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है. इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जज्ब हो जाता है जैसे सूखी मिट्टी पर कोई पानी के कतरे फेंक गया हो. धीरे धीरे आंगन में फिर धूप सिसकती रहती है, कब आते हो कब जाते हो.

बंद कमरे में कभी कभी जब दिए की लौ हिल जाती है तो एक बड़ा सा साया मुझको घूंट घूंट पीने लगता है। आंखें मुझसे दूर बैठ के मुझको देखती रहते हैं, कब आते हो, कब जाते हो, दिन में कितनी बार मुझे तुम याद आते।

के जाते हुए पंछी ने बस इतना ही देखा, देर तक हाथ हिलाती रही वो शाह फिजा में, अलविदा कहती थी या पास बुलाती थी उसे।

0: ये सागर आया
1: आया
0: ये सागर कैसे पार करे
1: करें
0: सुग्रीव तुम बताओ बजरंगबली क्या विचार है रघुवीर अब तुम बताओ क्या करें
2: अरे पाथर फेंको

0: जिसे और कभी लड़ती भी है ऐसे के बस खेल रही है मुझसे और आगोश में नन्हे को लिए
1: Will you shut up?
0: La-

बड़ी डिफी बड़ी डिफी कल्टी कल्टी डिफिकल्टी से मिलता है। तकीला नकीला हबहूबा लबालूबा दुम तक दुम तक।

0: कैसी बंसी अब बजाई श्यामा सुध बिसराई तररे तररे तररे तररे
1: भूल गया यार
0: तररे तररे तररे ररे ऊंचे सुर में गाए जा मस्ती में लहराए जा दुनिया

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए।

0: थई थई थई थई झाक दिनक दिन ताक दिनक दिन ठाक दिनक दिन ताक दिनक दिन घा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।